इना बैठिया लोगों नू इंज लगे जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जी फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। ओ तुरदे तुरदे इन्हां सारिआं लोकां दे सामने आके बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिआ। एक मुसाफिर मालक जापदा है, एक नौकर। नौकर कहन लगा,

उस मालिक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा के अपने नौकर नूं हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा है लोहे दी संदूखड़ी नाल ओ किस तरह कौन है मालिक ते नौकर। मालिक तन गुरु नानक साहब ते नौकर मरदाना। हैरान हो के पुछया संदूखड़ी दे नाल इहदा मन किस तरह।

कहन लगे जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई एक बारी फेर कहो अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता गुरु साहबा नू कोल के देखिया ते जोगी राज कहंदा ए बालके ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं तुम नहीं जान सकते गुरु साहब जी कहन लगे असी जान नहीं सके इसे वास्ती ता पूछिए ते जोगी राज कहन लगा ए बालके मैं इन लोगों को तीनों लोगों की बातें बता रहा हूं तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोची

गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखां बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे है, इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई से। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे हां। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो भैणा बड़े वड्डे संत महापुरश आए ने जेड़े इक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन करदे ने ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नूं संत समझ के पर बगला जिहड़ा है इक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते उदों ही पता लगदा है जदों बगला मच्छी नूं मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहिंदे ने इह संत भी ओहो जिहे ने उस बगले दी तरह के जदों दा लगदा है इंसान नूं लुट पुट के खा जांदे।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बैंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंग च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्बे लम्बे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्बे लम्बे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मनुष्य की पाछा एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े शमीता है।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हन, आउन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह।

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पड़ी प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोभ मीठे साद, मन सोया माया विस्माद।

की सुते है एडी गूढ़ी नींद आई है ये एक मेरी पासा भी नहीं बन निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत दिता है और उसको कोई ना कोई रोग लगा ही कोई उसको चला कहता है कोई दीवाना कहता कोई बावला कहता मैं चुप कर गया मैं खामोश हो गया लोकां दे बच्चे खेल दे हैं पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं तीन दिन हो गए हैं प्रसाद नहीं छके पता नहीं कीड़ा रोग अंदर जाके सोता है तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया ही जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई जिस मां का पुत भुखा सो गया उस मां नूं नींद नहीं दी पुत सो गया है मां जाके उठा दी काका भुखा क्यों सो गया एक बुरकी तो मुंह च पाए मां दी आंदर ठर जाए बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत माता तृप्त इना ख्याल इन्हों विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नु पुत्र ही सुन गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत भरी आई है श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई हटी भावना सब तो वड्डी जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मर विश्वास ही वड्डी विश्वास ही सब तो वड्डी असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक पर मत्था टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ